उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

भजन करो हरे जगत।

0: हरि जगत जगतार भजन करो, हरि जगत जगतार भजन करो।
1: सर से

0: आजीविका जाने सुने और अपनाए।
1: बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
2: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
2: बिल्कुल, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा। चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके, बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
2: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
3: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
4: जी,
3: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारे जो है चीजें तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर चना उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
4: जी।
3: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
4: जी।
3: तिल का तेल है
4: जी।
3: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
4: जी, जी।
3: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
4: बिल्कुल सर।
3: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
4: जी।
3: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
4: जी।
3: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
4: जी।
3: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
4: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
3: इसे स्वरोजगार, जिसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
4: जी।
3: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
4: जी,
3: उस तहत में काम कर सकते हैं
4: जी।
3: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है,
4: बिल्कुल सर,
3: तो उसका हम उपयोग गाँव में तमाम चीजें होती है
4: जी।
3: जैसे बेसन है, दलिया है, यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है,
4: बिल्कुल सर।
3: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
4: जी,
3: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं, उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप FPO होता है
4: जी।
3: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाएं और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है?
3: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
4: जी।
3: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए, गाँव में लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गाँव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार

0: अखबार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
1: जी।
0: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
1: जी
0: उसमें चीजें हैं। हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है। अगर चावल की बिनाई कर ले, पाइप बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
1: जी,
0: जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले
1: जी,
0: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चने के रूप में यूज करे, सेकंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी
0: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आके खोलने की जरूरत है
1: जी।
0: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
0: कोई चीज बिकती कब है, जब क्वालिटी होती, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
1: जी
0: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है। यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, MP के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते है
1: जी।
0: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है। तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है। अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी।
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपके क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
0: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं गवर्नमेंट से स्वरोजगार

0: रोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं, और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में, जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है, यानी पैसा उपलब्ध कराती है। तो आप, ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही है। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, फोन नंबर है हमारा
4: 9919207749।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। आप दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब।
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती

0: रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है। तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटेड जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: बिंदिया रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी है।

0: अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी, और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं? वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है, ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत, प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार

0: अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं, और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है 9425147726।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही है गो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो है गो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। ई कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैंगी उनने कोनो ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आती तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं वो?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हो कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कोको है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम
1: हुआ? पे वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब के थे। जगह जमीन नहीं आती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये 10 रुपये दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस यही खेल खेलते थे। और क्या, चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा
1: सावन को मुझे चपेटा खेला।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी खेल रहे।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत, एक आध गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना, तो मैंने गीत में था।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
1: नहीं,
0: पहले तो गाती नहीं हूँ आप?
1: अब मैं भूल गया, तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: बुढ़ापो का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती है?
1: कौन नहीं गाते हैं
0: आप? गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियां को अब जाने कहाँ कहाँ गई। को अंगूरी नाम तो काऊ को पुष्पा नाम तो ऐसे सबके नाम आते सबके। कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते कभी कभी, इकट्ठे हो जाता खुशी। तो जब से आप लोग मायके में आप, तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता।
0: अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे? मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन से चलते?
1: कपड़ा पहले तो देखो, गरीबी हती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिरा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते और हम तुमने फिरा के दे रही तो भी पहन लेंगे बस, और यही पहरा होता।
0: अच्छा जी, मतलब कोनो अलग से नहीं है?
1: कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम बाप से बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में
1: हुई? हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई आती
0: कोई। तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई थी
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखा तो?
1: हाँ,
0: पहले से देखा तो?
1: हाँ, नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते।
0: हाँ,
1: पहले ना को मोड़ी देखा तो ना को मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: एक से तो आते ही हमारे बाप माताई ने 8-9 साल के साथ, हम 9 साल के,
0: 9 साल के
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जिन दिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका।
0: सही बात।
1: फिर उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
0: अच्छा,
1: तो वही बताई नहीं होते कई में करना।
0: 500 रुपया में ब्याह होगा?
1: नहीं, सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे, उन लोगों ने और धारा दे दे, वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा, पुन में दे दो पैसा।
0: अच्छा,
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो तो
1: सही से हुआ ब्याह हो गया।
0: अच्छा, जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल देते हैं? राधापुर में भाई है
1: ना, राधापुर
0: राधापुर ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी, जैसे पहले दिन तेल मंडप,
1: पहले पहले मंडप तेल भाव, फिर मंडप भाव, फिर टीका भाव।
0: अच्छा, तीन ही दिन को ब्याह हो
1: तो? हाँ, तीन दिन को हो
0: तो। बारात तीन दिन मिली रही थी
1: नहीं? एक ही दिन, नहीं तीन दिन मिली रही थी बारात।
0: तेल वाला दिन आ जाती
1: नहीं, ब्याह टीका के दिन।
0: अच्छा,
1: और फिर भावर मावर बराती, फिर वो दिन थोड़ी जाती बारात, दूसरे दिन जाती।
0: दूसरे दिन जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी? हाँ, जयमाला नहीं डरी बहन, हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे, हाँ अरे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा,
1: और जो टोम जो होट पर लाल बाको ब्लाउज।
0: अच्छा,
1: जो सब लड़का मड़वा घाला ना तो चावल मार देता।
0: अच्छा, चावल जी का घाले जाता आपको कुछ बताओ?
1: नहीं बता, हमें नहीं बता।
0: अच्छा, चावल को कुछ बता ही नहीं, सब घाल रहे थे
1: तो मड़वा के नाचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने, बोले चावल मार दे सब ने।
0: फिर उसके बाद
1: बस फिर बाहर चलो गो लड़का, फिर पंगत मंगत होने लगी, पंगत मंगत भाई, फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो। फिर
0: कहाँ कहाँ चढ़ो तो आप?
1: हमें पेजना चढ़ी थी एक किलो के और खंगवज्जा।
0: एक किलो की पेजना?
1: हाँ, एक किलो के पेजना और खंगवज्जा, और जो इतने पैर थे पहने थे
0: बाजूबंद।
1: हाँ, बे चढ़े थे।
0: अच्छा,
1: तो अब रखे हो आप? हाँ, बहन की बात है।
0: अच्छा,
1: छह लड़का होगा, छह लड़का के ब्याह कर ला है।
0: अच्छा,
1: से
0: सही बात है। अच्छा, आपकी विदा का है भाई दी?
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा भाई में भाई थी
0: नहीं
1: तो फिर बैलगाड़ी में आए थे।
0: बैलगाड़ी
1: में पहले बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी।
0: अच्छा, बैलगाड़ी से
1: आपकी
0: और
1: बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हमारी का। पहले जेते वाहन कहाँ थे? ओरछा तक निगज जाते, खेलार तक निगज जाते, अब तो एक कदम नहीं निगरा वो आदमी।
0: अब तो अगर उधर भी जाना है,
1: अगर तुम्हें कारस देव न जाना तो गाड़ी से
0: जाना है।
1: जाना,
0: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको?
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा, आप कितने नंबर की
1: है? हम दूसरे नंबर के। नानी ले दो,
0: नंदन की शादी हुई शादी के बाद?
1: बड़ी हती,
0: बड़ी हती। अच्छा, तो फिर आपके एते का करस में भाई मतलब कंकन
1: झूटा? कंकन झूटो, हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे, फिर चले गए थे।
0: अच्छा, और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
1: खिचड़ी बनाई थी।
0: तो आपने खुद बनाई थी?
1: नहीं बना पाई थी हमने, हमारी जेठानी ने बना दी थी।
0: अच्छा,
1: और चमचा से तरवा दी थी।
0: नाम हुआ
1: तो ओरेंडर द्वारे में ओरेंडर वा दे।
0: अच्छा,
1: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में।
0: उल्टो नहीं हो रहा?
1: पहले देता ही हते, अब भी देता मोरन के। जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे नो रखवा सा बहू से सास लेते हुए पैसा, चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ एक रख दे, लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेंड पे रखत बहु।
0: अच्छा,
1: तो बेबी सास ले।
0: अच्छा,
1: जी की सास ना हो तो जेठानी ले।
0: तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खोलते ही सास, तो आपके समय में खुलती?
1: नहीं, हमारे समय में नहीं
0: खुलती, जूड़ा नहीं खुलती। अच्छा, आपकी
1: जो छोड़ा खोलते, जो
0: छोड़ा खोलते,
1: जो छोड़ा
0: भी
1: पैसा सास खोल सकती है,
0: खोल सकती
1: है, खोरसा खाती
0: सास। इसो काम हाथ हो तो मतलब
1: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास।
0: कछु
1: महा थुज जी को?
0: अच्छा, आपको नहीं पता?
1: ना, छोटे आते से कछु दे
0: आते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में, फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिल के कराती या लड़ाई होती?
1: जेठानी के संग कराते, लड़ाई का एक होती।
0: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
1: नहीं, हमारी नहीं हुई जेठानी
0: से,
1: ना सास से भाई का होना
0: काय नहीं होती। आप सीधी आती के दो जने
1: दो ही एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने, फिर से आने होगा सब अलग अलग होगा।
0: अच्छा, और सासरी में का काम होते? आपके खेती
1: होते?

0: राट से खेती होती
1: अच्छा।
0: पहले मोटरें कहाँ थी, राट ही से खेती होती, से राट चलाते रहते।
1: अच्छा, और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठती
0: हैं? 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से पी सकते, 5-6 किलो नाच पीस लेते।
1: 5 किलो रोज पीसने?
0: हाँ रोज, इतना जेठानी पी सकती।
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो? 4 बजे से भी पी सकती।
1: संगे पी सकती?
0: हाँ, कभी संगे कभी अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा, फिर उसके बाद चक्की पीसने के बाद का काम?
0: फिर गोबर मोबर डालते।
1: कितने गाय भैंसे होती
0: है? पहला 10-12 गैया होती, गोबर मोबर डालते, झाड़ा झूरी करते। फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
0: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, सो रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा, वहाँ से बहाने आते
0: नहीं, बेलन से
1: चलते
0: नहीं आती लोहे, सो वही चलाते रहते। कबू सात जेठानी चलाती, कबू हम चलाते रहते।
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी? नहीं। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है? हम 6 लड़का।
1: 6 लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है एक।
1: लड़की नहीं है एक। तो अपने लड़कन को तो पढ़ाओ जो खूब है?
0: हाँ, पाए को पढ़ा, मैं परेशानी हती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी। हाँ। स्कूल में। तो अब सबकी शादी हो गई?
0: हाँ, सबकी हो गई, सब सब नाती ने तुलन की हो गई।
1: अच्छा, नातीन की भी हो गई? कितनी नाती है ये?
0: 6 नाती है, 6 नातने है।
1: अच्छा, तो
0: बिलाती
1: को मतलब बिलात बड़ा परिवार है?
0: हाँ, तो 6 लड़का है, तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के 4 हैं बड़े के, 3 मोड़ी हैं। तो एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए, ना मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा है वो।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको? अच्छा लगा थी तीति भान पे और सब जने आ जाते हैं, तो अच्छा लगा थी। तो आप सुवाटा नहीं खेलती हो?
0: सुबह तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो, बस फिर खेल
1: गाना भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही है आप?
0: 20 साल से ज्यादा हुई है।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में मई लग गई थी।
1: कैसा लग गई थी? मतलब
0: पहले 4 जन के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा।
0: सो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने, सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह, कभी ज्यादा भी हो सकत।
1: हाँ,
0: 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
1: धीरे धीरे करके
0: सो फिर हम इनके ससुर बोले ला जाओ हम दे दे वो करें, तो मैं 2-4 पहली नाच खावे के लाने बजे का करा। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको, तो फिर लगे रहे इनके। तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो, हमने बना तो नहीं अभी।
1: अच्छा।
0: तो जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब से पानी भरो इनको, मतलब खावे पीवे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं आ तो जी दे तो सकते खाओ, और नहीं करते तो को दे रहो।
1: सही बात है,
0: दे रहो तो को भी ना करो।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500 हो जाते।
1: चलो
0: बढ़िया। फिर 350 है हमारे, फिर 1500
1: भाई। अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी हो, जब आंगनबाड़ी कर ली, फिर से जाकर
1: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे?
0: जब पहले तो महत्व देखो, आप सोच रहे आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे?
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए?
0: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
0: है, लेकिन नाम मिल रहा है, पहले कहाँ मिल रहा?
1: हाँ, पहले नहीं मिला, तो लेकिन अब मिल रही, तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है कि अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी, नातनी नाती पढ़े,
1: पढ़ा चाहिए।
0: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो, को हुआ बड़ी बड़ी हो गई, सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो, ब्याह कर दो, नातन की।
1: बहुत बढ़िया।
0: आप को कर दो, अब दोनों ठीक पड़ रहा है।
1: चलो बढ़िया माँ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन हो रहे सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, जी सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी। काहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढत थी, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है गो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगत हैंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आए गो, घर को काम ही देखने आए गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलाने में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप और सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैंगे, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप ये गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, शूर्णिलासिता तथा उपटा या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि...

0: इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाए और उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को
0: जी
1: तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो
0: जी
1: यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया
1: जी
0: आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गी की बात करें तो कद्दू वर्गी की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो
1: हाँ
0: कौन
1: जी
0: कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या
1: जी
0: उनको उपाय करना चाहिए मैम?
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें
0: जी
1: प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकटा या ग्लानि रोग। तो
0: जी
1: ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ।
0: जी
1: तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: जी मैम, यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो
1: जी
0: शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को

0: आते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैं बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
1: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
0: यस
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है, और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है, और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
1: जी
0: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं इस
1: बिल्कुल भाई,
0: क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और

0: रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए, क्योंकि क्या होता है जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा।
1: मतलब इसका ये कारण, मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत में तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी चीज ये है वहाँ रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है? मैम
0: देखिए जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है, तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है,
1: जी

0: हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम,
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और
1: बिल्कुल
0: जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो हैं वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और
1: जी मैम,
0: हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी मैम,
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं
0: तो
1: ना कहीं
0: इसका
1: मैम
0: जो है
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम,
0: एक और
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात
0: हो
1: कही है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा विकल्प है
0: करें।
1: जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: जी, क्योंकि
1: समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती,
0: होंगे,
1: जी
0: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी आप
1: जी
0: पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल,
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम,
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम,
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम काम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, जी मैम,
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा था,
1: जी मैम,
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान
0: जी
1: मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम,
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम,
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
1: जी मैम,
0: उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए।
0: जी, धन्यवाद।

0: मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: चलिए, थैंक यू साथियों। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

Deli. नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गांव में क्यों ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलानी की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे, तो बहुत ही तैयारी से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथ में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखने हैं आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखते हैं तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लगो रहा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज यही क्रम में अपन सुने विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भय सुनते प्यारी सी नौटंकी को जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: ज्ञान के घाती बने हैं। यानी हमारे भाई साहब ने,
1: तो सुनो भाभी,
0: अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे संग में मरेंगे तू भाभी, अभी तो जगत में जचेगी ये सासी।

0: बाजार से एक शीशी लाकर देता हूँ और सारे भोजन में चाहे मिला दो और हाजलों को खिला देना।
1: नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करिए महाराज, नहीं। वाली जा, मेरे लाला हरदोल को बुला के ला।
2: जाती हूँ लाला जी। चलिए, तुम्हारी भाभी ने याद किया है।

0: ज्ञान के घाती बने हैं। यानी हमारे भाई साहब ने,
1: तो सुनो भाभी,
0: अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

लीजिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दू, नहीं तो ऐसा नहीं है। मेरे संग में मरेंगे तू भाभी अभी, तो जगत में जचेगी ये सासी सही, सारी दुनिया कहे

0: देखो दोस्तों, जहाँ अपन सब जनन ने सुनी है नौटंकी, इ नौटंकी को आनंद लव है दोस्तों। इ नौटंकी को गा रहे थे बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। आप साथियों, एक क्रम में हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ये कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया जी को जाबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दीन भैया को तो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ये कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।
1: विधा बुंदेली।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी कहे ना। एक तरफ ये देवी है दूजा में पुजारी हूँ और

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना

कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले।

तो चाल चले मतवारी, नई फैशन की पे

बहुत जनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, अरे बहुत जनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

अरे ओ पद बेड़ में बिज गई आज आधारू में लटकी ठाणी ए ठाणे अप ठाने अपनी लई ठान ठान।

काव्य धारा। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। और कप्ताएं कार्यक्रम में अपन आज सुने कुमार विश्वास जी की लिखी भाई कप्तान को। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ देर ना करत भय सुनते हैं अपन एक कविता को जी ये कुमार विश्वास जी लिख रहे हैं कि उनकी खैरों खबर नहीं मिलती, उनकी खैरों खबर नहीं मिलती, हमको ही खासकर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, मुझको तू ही अगर नहीं मिलती, रूह में दिल में जिस्म में दुनिया में ढूंढता हूँ मगर नहीं मिलती। लोग कहते हैं रूह बिकती है, मैं जहाँ रहता हूँ उधर नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सुजा देखो कितनी बढ़िया कविता लिखी है और ये कविता को लिख रहे थे कुमार विश्वास जी। तो दोस्तों, अपन ऐसी कविताएं आगे भी सुने और कप्तान को आनंद लें। दोस्तों, एक क्रम में कायना अपन एक बढ़िया से गीत को सुन लें और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों, सुनते ही बढ़िया से गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी।

बिल्कुल दोस्तों, राम नाम केबू करे धरे रहो मन धीर, ओ कारज बेई समार है सु कृपा संत रघुवीर। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में जो अपन कप्तान को सुन रहे थे सो कप्ता को सुनत है, जब कप्ता लिखी है कुमार विश्वास जी ने। सो दोस्तों आओ इनकी अब दूसरी कप्ता को अपन सुनत है। कुछ छोटे सपनों के बादले, कुछ छोटे सपनों के बदले, बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे। जाने कौन डगर ठहरेंगे, वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुद जवानी, हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने का जाने, हार जीत तय करती है वो, आज कौन से घर ठहरेगी, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डहर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होंठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लालच बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोरपंख से छाया मांगे, उनके भी दुर्मय इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो देखो कितनी बढ़िया जा कविता जो अपन ने सुनी है, एक कविता को लिखी है थी कुमार विश्वास जी ने। सो आओ दोस्तों अब कुमार विश्वास जी की ये कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं और वो कविता को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसी बने रहो अपने रेडियो माता दीन के संग में। अब देखो कुमार विश्वास जी का लिख रहे कि खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पे एहसान कर रही हो ना, जिंदगी हसरतों की मैयत है, जिंदगी हसरतों की मैयत है, फिर भी अरमान कर रही हो ना, नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही है ना। जी हाँ दोस्तों, कि नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही हो ना, हमने समझा ये प्यार पर तुम तो जान पहचान कर रही हो ना। देखो कितनी बढ़िया कविता अजा भैया जी ने लिखी है कुमार विश्वास जी ने, और एक कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। सो दोस्तों आप और ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अब देखो भैया जी अपनी अगली कविता में का लिख रहे कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ तो देखो आगे का लिख रहे, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों के छाँव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। बहुत अच्छी बात कि कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में, एक गीत पलकों पर लिखना, आहा, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होंठों पर लिखना, यानी सारी गीत हृदय की, यानी सारी गीत हृदय की मीठी सी चूटों पर लिखना, जैसे चुप जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर जाते हैं मेरे मन के गांव में। पलकें बंद हुई तो जैसे, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्मंत सो गए हो, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्मंत सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए, जैसे धूप चुनरिया ओढ़ आ बैठी छांव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। तो देखो दोस्तों भैया जी कितनी बढ़िया कविता लिख रहे हैं और इन कविता को अपन सुनने हैं। आओ एक क्रम में उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
भैया जी आगे का लिख रहे कि जाने कौन नगर ठहरेंगे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, कुछ छोटे सपनों की खातिर, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे। जाने कौन नगर ठहरेंगे, वहीं प्यास के अनगढ़ मोती, वहीं धूप की सुर्ख कहानी। तो देखो भैया जी ने बहुत ही अच्छी ये कविताएं लिखी हैं और कप्तान के संगे संगे अपन कह रहे हैं कि माता दीन भैया आप केवल कप्तान की धुन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। तो दोस्तों आओ एक और कविता को सुनने के बाद फिर अपन मनोरंजन की ओर चलें और मनोरंजन में सुने अपन बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लें। तो देखो अब भैया जी कुमार विश्वास जी आगे का लिख रहे हैं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल एक ऐसा तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। जो शीशे से पत्थर तोड़े, जो शीशे से पत्थर तोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मुड़े, उसका नाम मोहब्बत है। पनाहों में जो आया हो, पनाहों में जो आया हो, तो उस पर बार क्या करना, पनाहों में जो आया हो तो उस पर बार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पर फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमकस में है, जो भी मालूम गहराई तो दरिया पर क्या करना। जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। बस्ती बस्ती घोर उदासी, बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमूल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भुलापन है, एक मेरा दीवानापन। अब देखो ये आगे का लिख रहे कि तुम्हारे पास हूं लेकिन, तुम्हारे पास हूं लेकिन जो दूरी है समझाता हूं, तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझाता हूं। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी है समझता हूँ। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बस नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। देखो कितनी प्यारी बातें भैया जी ने लिखी हैं। सो अब दोस्तों देखो आप उन्हें कह रहे हो कि माता दिन भैया ब्लड टीम से कप्तान में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो आओ सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

0: बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में तू आकर भूला ईश्वर की डगरिया। देखो कितनों प्यारो जोगी तपन सबजन ने सुनो है ये गीत को, आनंद लो है ये गीत को गा रहे थे भैया राजेंद्र सिंह जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम कविताएं में आप सब जन को जी कविताएं कैसी लगी। अब दोस्तों जो कविताएं कार्यक्रम आप सब जन ने सुनो है ये कविता कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो रहा है। तो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। तो जब तक के लाने नमस्कार।
1: काव्य धारा

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में। और दोस्तों, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम सफल व्यक्ति पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। चूंकि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे युवा साथी जिससे प्रेरणा लें और अपने जीवन में कुछ बदलाव करें, क्योंकि हम हर उस बिंदु पर बातचीत करते हैं, चाहे वो योजना से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो उनकी कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी बातचीत हो। सारे छोटे छोटे मुख्य बिंदु जो रहते हैं उन पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा साथी, चूंकि युवा साथी हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों की जो सोच है उनकी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी के माध्यम से हम जाते हैं, जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अनुभवों को साझा करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी के अनुभवों से हम एक चीज ना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी रहते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस क्षेत्र में मुकाम हासिल किया हो, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया हो, तो प्रेरणा स्रोत जिसे कहा जाता है, प्रेरणा जिससे आपने प्राप्त की हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो यार हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, चाहे आपके गांव का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, इन सारे लोगों से हमें कहीं ना कहीं इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने आज ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी एवरेस्ट की चोटी तक, क्योंकि वही कहेंगे, क्योंकि ये एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि लोग इनकी चर्चाएं करते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि कार्यक्रम के माध्यम से उन सारे बिंदुओं को उठाएं, उन सारे बातचीतों को उठाएं जो हमारे युवा साथियों की सोच में परिवर्तन करें, उनसे युवा साथी हमारे को सीख लें। ऐसे ही दोस्तों, आज सफल कहानी हम बालकिशन अहरवार जी की सुनाने जा रहे हैं। और उनसे हमने, जब हम महाराजपुरा गए तो उनसे हमने सीखा कि उन्होंने शुरू से ही कह दिया, चूंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे, हमने उनसे जब जानने की कोशिश की और बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम पढ़ने में होशियार थे, लेकिन हमारी सोच शुरू से ही थी कि व्यावसायिक क्षेत्र में हमारा एक नया मुकाम हासिल करना है। और उस क्षेत्र में वो गए पढ़ाई करने के बाद, दसवीं में वो ओरछा में अच्छे नंबर लाकर ओरछा टॉप किया उन्होंने, और अपनी सोच को परिवर्तन किया कि हम किस तरीके से अपनी इस हुनर को निखार सकते हैं, और उन्होंने दूसरों की या नौकरी की। नौकरी करने के बाद उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि खुद का कंप्यूटर सेंटर ओरछा में, अच्छा कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, 4-5 लोग उनके उस कंप्यूटर सेंटर में रोजगार पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आपको सीधा बालकिशन अहरवार जी के पास हम ले चलते हैं और उनकी कहानी को सुनते हैं, उनकी ही कहानी उनकी ही जुबानी से सुनते हैं और उनसे जानते हैं, उनसे जीवन से उनकी प्रेरणा लेते हैं। तो आइए सुनते हैं बालकिशन अहरवार जी को।

0: सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम बालकृष्ण अहरवार है, मैं महाराजपुरा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ में जो आता है। बचपन में जो है पांचवी तक मेरे गांव में स्कूल था, पांचवी तक मैं गांव में ही पढ़ा, उसके बाद ओरछा आना पड़ा। ओरछा
0: पहले तो सबसे पहले बालकृष्ण जी ये बताइए, आपके परिवार में घर में कितने सदस्य हैं और क्या करते हैं?
1: मेरे परिवार में हम लोग चार भाई हैं, दो बहनें हैं, मम्मी पापा।

0: पापा और नानी।
1: अच्छा नानी रहती
0: है? हाँ नानी के यहाँ रहते हम लोग।
1: अच्छा नानी, वैसे गांव कहाँ है आप?
0: वैसे पैतृक तो हम लोग हैं झांसी से।
1: अच्छा झांसी।
0: हाँ लेकिन निवास यहाँ करीब मतलब हम लोगों के सभी के जन्म यहीं पे हुए हैं, तो सभी लोग यहीं पे निवास करते हैं।
1: नानी जी क्या आपके पापा आ गए थे?
0: पापा मम्मी सब लोग हैं, मतलब
1: सब लोग। हाँ अच्छा अच्छा। अभी कभी पैतृक गाँव आप जाते हैं?
0: हाँ झांसी है हम, घर है वहाँ पे भी है,
1: वहाँ पे चाचा वगैरह सब।
0: हाँ सब लोग परिवार है।
1: अच्छा अच्छा। आपके पिताजी क्या करते हैं?
0: पिताजी प्राइवेट काम करते थे झांसी में।
1: अच्छा प्राइवेट काम। उस समय उनकी आमदनी कितनी थी?
0: उस समय मतलब 3000 रुपए मिलते थे, और करीब 10 साल से तो हम उनका काम बंद करवा दिया है।
1: अच्छा काम बंद करवा दिया।
0: काम बंद करवा दिया।
1: आपके भाई क्या करते हैं? आपने बताया कि 4 भाई बहन हैं।
0: तो आप ये प्रेजेंट टाइम में वो मतलब खेती करते हैं? और
1: छोटे भैया आपके?
0: नहीं छोटा भाई तो गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाता है।
1: अच्छा यहीं पे कहाँ?
0: और दो बड़े भाई हैं हमसे। हाँ। तो वो दोनों ही खेती करते हैं, और बाकी टाइम में जैसे खेती के जो टाइम
1: बची है। आप
0: खेती शुरुआत में तो बहुत कम थी, लेकिन फिर मेहनत करके कुछ खरीद लिए। तो
1: कैसे
0: खरीदे? ऐसा है शुरुआत में जब बड़े भाइयों ने मतलब मजबूरी बस पढ़ना छोड़ दिया, तो फिर थोड़ी सी जमीन थी नानी की, उसमें खेती की मजदूरी की, तो थोड़ा इकट्ठी करके कुछ जमीन खरीदी, और कुछ शासन ने हम लोगों को दी थी जमीन।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो वो आज करीब 14 एकड़ जमीन हम लोगों के पास है।
1: दो भाइयों के बीच?
0: नहीं चार भाई।
1: चार भाइयों के बीच?
0: चार भाइयों के बीच।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके गांव की जो पैतृक गांव आपने बताया झांसी, झांसी में भी आपकी जमीन?
0: झांसी में मकान है, बाकी प्रॉपर झांसी में है, तो वहाँ खेती की जमीन।
1: खेती की जमीन रही है। अच्छा यहीं पे महाराजपुरा में?
0: हाँ महाराजपुरा में।
1: अच्छा अच्छा। और जब आप शुरुआती अगर आपके जन्म की अगर बात करें, तो आपका जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या आपकी गतिविधियां आपने की, और किस तरीके का आपका बचपन रहा?
0: बचपन में भाई 5वीं तक स्कूल था, तो गांव में ही पढ़ाई हुई। उसके बाद ओरछा आए, ओरछा में बहुत दिक्कत से आना पड़ता था, रास्ते में कीचड़ की रास्ते थी, पहले रोड मोड नहीं थे।
1: अच्छा।
0: पहले तो ये था कि गर्मियों के समय में तो अकेले बंदे को आने में भी डर लगता था,
1: जंगल था।
0: हाँ तो एक साल तो हमें मम्मी पापा ने बैक करा दिया था कि अभी कोई साथ जाने के लिए नहीं है, तो अभी एडमिशन नहीं कर रहा हूँ।
1: अच्छा आपके गांव में कितने ऐसे युवा होंगे जो पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे, लेकिन समस्या जी आती है?
0: अब तो फिलहाल मतलब 8वीं तक स्कूल हो गया है, सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं, तो अब तो युवा सभी शिक्षित होना चाह रहे हैं, और गार्जियंस भी उनकी हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं।
1: पहले दिक्कत थी। पहले कौन से लोग ज्यादा पढ़ाई में रुचि रखते थे? मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे आपने सोचा कि हम शायद आपके माँ बाप ने ये निर्णय लिया होगा कि इतने दूर अपने बच्चों को किस तरह क्यों जाने दें, लेकिन ऐसे कोई समाज में ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिन्होंने कठिनाइयों के साथ अपने बच्चों को भेजा और आज वो सफल?
0: हाँ जैसे पहले हमारे गांव में जिस समय हम पढ़े, तो उस समय गांव में पढ़ाई के प्रति ज्यादा रुचि नहीं रखते थे लोग। बात एक हमारे फैमिली जो थे वो मम्मी भी पढ़ी हैं, थोड़े पापा भी पढ़े हैं, तो वो समझते थे, तो उन्होंने पढ़ाया। जब हम यहाँ पे हाई स्कूल में यहाँ टॉपर हुई,
1: टॉप रहे हैं ओरछा में,
0: तो उस समय हमारे स्कूल से एक अध्यापक है, हमारे गांव ही से यहाँ अध्यापक, वो ओरछा में आ गए थे, तो उन कई उनके मतलब शिष्य मतलब ओरछा टॉपर हुए हैं, वहाँ गांव का लड़का टॉपर हुआ है, तो ऐसी चर्चा फैली, तो थोड़े गांव वालों के प्रति भी रुचि बढ़ी, उन्होंने कहा कि चलो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो उन लोगों की भी रुचियां बढ़ी।
1: अच्छा। हाँ। आपके साथ में भाई बहन आपके आते थे कि सिर्फ आप अकेले पढ़ने के लिए आते हैं?
0: नहीं हम दोनों भाई आते थे, पहले तो शुरुआत में मैं अकेला आया, तब तक वो गांव में पढ़े, फिर उसके बाद हम दोनों आने लगे, साथ में आते थे, और भी 2-4 लड़के और भी आते थे, लेकिन जब एक साल तक सभी लोग साथ में आए, लेकिन एक साल के बाद मैंने गाँव वालों का साथ छोड़ दिया, उसके बाद मैं और मेरा भाई ही आते थे, दोनों के टाइमिंग थोड़ी अलग अलग थी, तो अलग अलग भी आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
1: अच्छा ये बताइए कि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में क्या आपको फर्क महसूस हो रहा है?
0: देखिए पहले की पढ़ाई भी अच्छी थी, अभी की भी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, बुराई किसी में नहीं है, लेकिन अब वो वातावरण का थोड़ा असर पड़ता है।
1: कैसा वातावरण का
0: असर? अब जैसे आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल सभी चलाते हैं, लेकिन अब कुछ लड़के उसका यूज लाभदायक भी करते हैं, कुछ मिसयूज भी करते हैं
1: जी।
0: अब एंड्रॉयड मोबाइल पे अगर बच्चा सही से अगर जानकारी लेना चाहे तो यूट्यूब पे वो आधी पढ़ाई कर सकता है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, लेकिन आपको अधिकांश बच्चों को आपने केवल व्हाट्सएप और आप देखा होगा मूवी देख रहे, गाने देख रहे, यही सब देखते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा आपकी शादी हो गई है?
0: शादी हो गई।
1: कितने बच्चे हैं आपके?
0: एक बिटिया है।
1: एक बिटिया है, उसको पढ़ा रहे हैं?
0: पढ़ा रहे हैं।
1: कितने में पढ़ती हो?
0: अभी नर्सरी में।
1: नर्सरी में पढ़ती हूँ। आपकी जब आप गांव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए और आपने यहाँ पर दसवीं में टॉप किया है तो आपको किस तरीके की खुशी महसूस हुई थी, क्या क्या लग रहा था?
0: खुशी तो हुई थी और सभी टीचरों का भी यहाँ पे अच्छा सहयोग रहा मेरे प्रति। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी टीचरों ने गांव के हिसाब से वो मुझे लाइक भी करते थे कि ये गांव से निकल के बच्चा मतलब आ रहा है, वो होशियार है, ओरछा के बच्चों से अच्छा होशियार है, तो वो लोग भी अच्छी तरह से सपोर्ट करते थे मुझे। जहां भी दिक्कत आती थी अलग से मतलब एक्स्ट्रा भी टाइम देते थे।
1: एक्स्ट्रा टाइम
0: देते थे? एक्स्ट्रा टाइम।
1: पहले तो ट्यूशन चलता नहीं होगा?
0: नहीं, ट्यूशन पहले भी चलता था। ट्यूशन भी मैंने पहले भी ट्यूशन पढ़ा है। मेरे गांव की हालत ये थी कि मेरे गांव के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो ऐसा इसलिए कि वो पैसे खा जाते थे।
1: अच्छा।
0: जब मुझे ट्यूशन पढ़ाया गया, जिनके यहाँ अनिल निरंजन सर है एक,
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो शुरुआत में सबसे पहले उन्हीं ने ट्यूशन पढ़ाया था। उन्होंने कहा बेटा पैसे मुझे पहले चाहिए क्योंकि तुम्हारे गांव के पूरे पैसे खा जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा था। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं पहले पैसे दे दूंगा। तो मैंने 2 महीने पहले पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने पैसे नहीं मांगे।
1: अच्छा।
0: कभी पैसे नहीं मांगे।
1: अरे
0: हाँ, क्योंकि फिर व्यवहार और उनका उनके मतलब उनका जो लगाव था मेरे प्रति अच्छा हो गया और उन्होंने देख लिया कि ये पैसे खाने वाला नहीं है।
1: अच्छा। आपका शुरुआत में आपने जब पढ़ाई की तो आपका सबसे रुचिकर विषय आपका कौन सा रहा है? मैथमेटिक्स। उसमें आपने काफी अच्छे नंबर लिए।
0: हाँ, मतलब रुचिकर सब्जेक्ट था, हालांकि नंबर तो मेरे बायो में ज्यादा आए थे लेकिन मुझे रुचि उसी में लगती थी, मन लगता था।
1: अच्छा, मन में।
0: हाँ, मन उसी में लगता था। हालांकि 11वीं में मैंने मैथ भी ली थी लेकिन यहाँ पे मैथ का ट्यूशन ना मिल पाने के कारण और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण, क्योंकि यहाँ रुक सकते नहीं थे, अब 4 लोग थे केवल मैथ में, 4ों के लिए ट्यूशन यहाँ मिल नहीं पा रहा था। वो 3 लोग यहीं के थे तो लोकल के, तो उन लोगों को किसी भी टाइम वो सर बुला लेते थे कि जिस टाइम फ्री है उस टाइम, अब उस टाइम मैं नहीं आ सकता था तो फिर सब्जेक्ट बदल लिया था मैंने, बायो से की थी फिर इंटर।
1: अच्छा, बायो बदलने। अब बालकृष्ण जी एक चीज जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और आपके पिताजी पर इतना भार बोझा कि 4 भाइयों को पढ़ाना, बहनों को पढ़ाना और साथ में घर का खर्च चलाना, इस तरीके की किस तरीके से वो मैनेज करते थे क्या?
0: देखिए, पिताजी भी मैनेज करते थे और बड़े 2 भैया हैं, उन्होंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी तो खेती से वो मैनेज करते थे।
1: आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जब शिक्षा हमारी छूट जाती है तो इसका सबसे ज्यादा जो रहता है वो हमारे कुछ पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक स्थिति की कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको लगता है ऐसा?
0: हाँ, मतलब ये अधिकांश देखा गया है कि जिन्हें पढ़ना होता है तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती। अब सुविधाएं में आर्थिक स्थिति भी हो जाती है और जिनके पास सुविधाएं हैं वो कहीं, अभी मेरे मतलब मैंने अनुभव भी किया है कई लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, और गांव के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है फिर भी वो मेहनत करके बहुत आगे आ रहे हैं।
1: आपके पिताजी ने कभी ये महसूस नहीं कराया आपको कि हम इतनी परेशानी में हैं और आपकी पढ़ाई में भी इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो किस तरीके का उन्होंने?
0: नहीं, अब ये है कि थोड़ा बहुत देखिए क्या है, परिवार में रहते हैं तो खुद ही इतना अनुभव हो जाता है कि मतलब परिवार किस परेशानी से गुजर रहा है और कैसे हमें पैसा लगा रहा है परिवार, तो ये तो खैर खुद ही अनुभव हो जाता है। और हालांकि उन्होंने जैसे अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो पैसे चाहे कैसे ही प्रोवाइड कराए हों, पैसे उन्होंने उपलब्ध कराए।
1: अच्छा अच्छा आपको महसूस नहीं होने दिया?
0: हाँ, मतलब
1: आपके
0: स्कूल टाइम के अलावा जैसे हमें जो भी टाइम बचता था तो हम घर में हेल्प भी करते थे खेती के काम में।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हाँ, घर पे जो भी काम होता था सब में हेल्प करते।

0: अच्छा। और पिताजी का आपके प्रति क्या रवैया रहा शुरू से ही, माता पिता का?
1: नहीं, माता पिता का अच्छा रवैया रहा, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट की है पढ़ाई में। जो तुम है उन्होंने कहा, मतलब जिस क्षेत्र में भी तुम्हें जाना हो, उन्होंने ज्यादा प्रेशर, लेकिन बस उनकी एक इच्छा थी कि मतलब सरकारी नौकरी की तरफ जाए, वो मेरी वो इच्छा नहीं थी।
0: आपकी नहीं थी? शुरुआत में आपने प्रयास नहीं किया कि हम सरकारी नौकरी की तरह जाएं, तरफ जाएं, और इसका हम
1: यह है कि मेरी रुचि ही नहीं थी, तो उस तरफ मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की।
0: क्यों नहीं थी? आपको क्या लगता था कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी?
1: नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं, मतलब मेरी रुचि ही नहीं जाती थी, जिसे बोलते कि मतलब बंदिश टाइप में नहीं रहना चाहते हम।
0: अच्छा, बंदिश आपको लगता है कि नौकरी में बंदिश हो जाती है?
1: हाँ, बंदिश से समझते हैं हम।
0: अच्छा, आपने एक भी प्रयास नहीं किया कि हम सरकारी नौकरी की तरफ?
1: नहीं, आपको देखिए क्या है, फॉर्म तो हमने डाले हैं, ऐसी बात नहीं है, डाले भी हैं, क्योंकि घर का प्रेशर भी रहता था, तो उनके ये है कि आप हेलना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जो मन से प्रयास होना चाहिए वो मन से प्रयास नहीं किया।
0: अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने 10वीं में टॉप किया था, तब आपको नहीं लगता था कि हम अब पढ़ाई हमारी अच्छी है और हमने 10वीं में टॉप भी किया है और हम 12वीं में टॉप करने के बाद हम नौकरी की तरफ रुझान करेंगे?
1: हाँ, ऐसा मतलब देखिए क्या है, शुरुआत में जब मैं उस जिस समय मैंने 12वीं की, उस समय थोड़ा प्रयास भी किया था कि चलो सभी माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है तो मिल जाए, जब तक करनी करो, नहीं करनी नहीं करो। लेकिन जब यहाँ का जो प्रशासन है वो उनका माहौल देखा कि सभी जगह रिश्वत रिश्वत, तो उस हिसाब से थोड़ा मन भी पीछे खिसक गया।
0: अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी प्रशासनिक जो रवैया है अभी भी रिश्वतखोरी चलती है, और रिश्वत की वजह से?
1: तो रिश्वतखोरी तो आप कभी भी बंद नहीं करा सकते और वो हमेशा ही चलती रहेगी। अब ये है कि थोड़ा कम ज्यादा चलता है, लेकिन वो बंद नहीं हो सकती।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद यदि आपके जब आप 12वीं करने के बाद आपने फिर क्या प्रयास किया?
1: 12वीं करने के बाद मेरा जो रुचि थी वो कंप्यूटर की तरफ थी, तो यहाँ ओरछा में कहीं कंप्यूटर सिखाया नहीं जाता था, सबसे पहले तारागराम में भी नहीं सिखाया जाता था, तो मैं जाता था हसारी।
0: अच्छा।
1: अपने गांव से हसारी जाता था, हसारी से सुबह कंप्यूटर की क्लास लेने के बाद फिर निवाड़ी कॉलेज जाता था। तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो निवाड़ी कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और उसके एक साल बाद तारा ग्राम में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हुई थी, तारा हाट से मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था पहले 6 महीने का, उसके बाद फिर मैंने झांसी से PGDCA किया।
0: तारा ग्राम से आप कैसे जुड़े? आप
1: तारा ग्राम से, सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर सीखने ही गया था, तो तभी से वहां से थोड़ा बहुत परिचय है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट से हम मई से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप उद्यम आपने लगाया है, कंप्यूटर सेंटर लगाया है, तो इसकी आपको प्रेरणा कैसे हुई और आपने किस समय इसको सोचा कि हमें इस सेंटर को डालना चाहिए?
1: देखिए, मैंने जब 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की एक दुकान थी, अंकित कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे मैंने काम किया, तो यहाँ पे नगर पंचायत वगैरह और बहुत सारे ऑफिसों का काम किया था, तो अनुभव तभी से काम करने का। उसके बाद मैंने स्वयं की दुकान डालने की सोची थी, तो उस समय मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया था कि अभी ये दुकान ना डालो और अभी थोड़ा कोर्स और अच्छा कर लो, तो उसके बाद मुझे PGDCA करने के लिए झांसी भेज दिया गया। हाँ, झांसी PGDCA करने के बाद फिर मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग भी किया है, उसके बाद विप्रो की फ्रेंचाइजी में काम भी किया है मैंने।
0: कहाँ पर?
1: झांसी, झांसी लोकेशन ही देखिए।
0: कितने दिन किया
1: उसमें? दो वर्ष मैंने काम।
0: दो वर्ष किया। उसका क्या अनुभव रहा?
1: उसका अनुभव अच्छा रहा, सीखने को भी मिला, लेकिन क्या है, एक प्राइवेट जॉब में एक बंदिश होती है वो थोड़ी खलती थी।
0: अच्छा, आपको शुरुआत से ही ऐसा क्यों रहा कि हम प्राइवेट नौकरियां ही नहीं करेंगे, ना सरकारी नौकरी तरफ रुझान डालेंगे? क्या
1: नहीं, अब ये है कि काम करना चाहते लेकिन बंदिश में नहीं करना चाहते, प्रेशर में काम नहीं करना चाहते, बस। अब उन्होंने बोला नहीं 9 बजे तो 9 बजे पहुंचो, चाहे भले ही 9 बजे वहां कुछ ना हो, लेकिन पहुंच जाओ। वो ऐसा हम नहीं रखा।
0: मतलब पीजीडीसीए में क्या सीखा आपने
1: जी?
0: पीजीडीसीए में
1: एमएस ऑफिस है, C++ है, दो तीन लैंग्वेज थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, एमएस ऑफिस था, ये सारे उसमें।
0: और आपने जो नौकरी की उसमें आप क्या किस पोस्ट पर थी?
1: उसमें कस्टमर सपोर्ट इंजी।
0: अच्छा अच्छा, कस्टमर सपोर्ट। उसमें आप क्या काम करते थे?
1: उसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों देखते थे।
0: आपको सबसे पसंदीदा आपकी रुचि जिसमें रहती है वो आपकी किस लाइन में है?
1: कंप्यूटर में
0: है।
1: हाँ,
0: कंप्यूटर में क्या सबसे अच्छा लगता है? कंप्यूटर चलाना कि लोगों को सिखाना, लोगों को मार्गदर्शन देना?
1: देखिए क्या है, कंप्यूटर सिखाने का ही लक्ष्य बना था, लेकिन सिखाने का थोड़ा क्या है, उतना टाइम नहीं निकाल पाते, तो कंप्यूटर में जितना जॉब वर्क है वो ही करने का वो है।
0: आपका उद्यम के क्षेत्र में कब से आपने विचार लगाया कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय करेंगे?
1: देखिए विचार तो मेरा लगा था 2007 से ही।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसके बाद लेकिन मम्मी पापा ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने पीजीडीसीए करने के लिए भेज दिया। पीजीडीसीए करने के बाद फिर वहाँ के और भी लोगों से मिले, फिर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स के बारे में जाना, तो उसके लिए भी मम्मी पापा ने पैसा लगाया और करवाया। उसके बाद मैंने घर से पैसा नहीं लिया और विप्रो की फ्रेंचाइजी में काम किया 2012 से वहाँ से काम किया, दो वर्ष उनके साथ काम किया, फिर उनका यहाँ से प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ था तो वो बोल रहे थे आप आगरा आ जाइए।
0: अच्छा।
1: आगरा में जाने का इच्छुक नहीं था।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, उन्होंने कहा आगरा आ जाइए, आगरा मैं जाना नहीं चाहता था, तो आगरा ना जाके तो फिर उन्होंने कहा बेटा तो फिर आप वहीं रहिए, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने लेकिन ये कहा था कि जब भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू होगा ब्राइटी आपको मिलेगी।
0: अच्छा, तो क्या
1: मतलब? हाँ, तो वो कह रहे थे सबसे पहले अभी भी एक दो काम जैसे इस तरफ के पड़ते हैं तो अभी भी कंपनी कॉल लगाती है और मैं करवा देता हूँ।
0: ठीक है। अच्छा,
1: हाँ, अभी भी जैसे कंपनी में नंबर है मेरा, फोन करते हैं उन्हें। अच्छा।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम। और आप सफल कहानी को सुन रहे हैं, बालकृष्ण अहरवार की कहानी को। और उनसे हमने जाना कि वास्तव में उन्होंने शुरुआत, उनका बचपन किस तरीके का रहा और उनके घर में कितने सदस्य, पूरी जानकारी, इनकी हिस्ट्री पूरी, हमने जीवन की हिस्ट्री को जाना और उनसे हमें सीख मिली कि इन्होंने शुरू से ही अपना मन बना लिया था कि हमें व्यावसायिक क्षेत्र में जाना और एक नया मुकाम हासिल करना है। और आज इन्होंने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि ओरछा रामराजा सरकार की नगरी है, पर्यटक की नगरी है और यहाँ पर इस तरीके का व्यवसाय करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने ऐसा ही किया। दूसरों के यहाँ सीखने के बाद उन्होंने एक सीख इनके जीवन से मिलती है कि दूसरों के यहाँ जब नौकरी करने जाते थे तो उनका रवैया, उनके प्रति किस तरीके का रहता था और उनसे उन्होंने सीख कर किस तरीके से अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल किया है और एक नए मुकाम को छूते हुए आगे बढ़े हुए हैं। तो उनके जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलनी चाहिए, सीखनी चाहिए। दोस्तों, चूंकि हम पूरी कहानी इनकी नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि समय भी हमारा इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर इनकी कहानी पूरी, चूंकि हमने जब उनसे बातचीत की तो काफी लंबी कहानी हो गई थी उनसे बातचीत करते करते की पूरी अभी तक की जीवनी उनसे उनके जीवन से सीखी, तो बहुत सारा समय हो रहा था। तो हमने सोचा कि इनको दो भागों में क्यों ना हम चला दें जिससे हमारे लोग इनसे प्रेरणा लें। अभी इस भाग में बस इतना ही दोस्तों, अगले भाग में फिर मुलाकात होगी इनसे ही, बालकृष्ण जी से। और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई, बहुत सारी ऐसे मोड़ आए जिनको हासिल करते हुए आगे बढ़े। तो इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। साथियों, इसी के साथ अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा, सफल कहानी कैसी लगी, आपकी भी यदि सफल कहानी है तो आप हमें जरूर भेजिएगा पत्र द्वारा, पत्र में भी लिखकर भेज सकते हैं। पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष इस कार्यक्रम सफलता की कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम से लेते हैं जाने।

abanico da cor. पानी को रखो संभाल जो चाहो जिंदगानी में, कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।

देखे आप। हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप। हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक। और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबी राम अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हीर।
0: जी हां दोस्तों, सो दोस्तों जो आप सब जन ने हमारा परिचय जानो है, अब एक संग संग चलते हैं अपन कार्यक्रम की ओर। सो कार्यक्रम को नाम है खेत खलियान, जैसो कार्यक्रम को नाम है तैसो काम भी है। आज अपन बात करें कार्यक्रम खेत खलियान में लोबिया की खेती की। सो लोबिया की खेती में अपन जाने के भूमि की तैयारी कैसे करें, बुआई को समय कब है, बीज दर का है, मुख्य प्रजातियां कौन हैं, ये सब बातें अपन करें आज के ही कार्यक्रम खेत खलियान में। सो दोस्तों ये बातें करबे से पहले आओ सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राज जी, और गीत के बाद फिर अपन की बात हो गए आगे लोबिया की खेती की।

0: गईती का धनिया डारी किते कर धनिया। देखो कितनो बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। सो दोस्तों जो अपन ने गीत सुनो है और ई गीत को आनंद लो है, अब आओ एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे के अपने संगे जो हीर हैं वे अपन को बताएं कि जो लोबिया की खेती अपन को जो करने हैं तो इसकी भूमि की तैयारी कैसे करें।
1: लोबिया की खेती की भूमि की तैयारी करने के लिए हमें दोमट भूमि जो होती है वो उपयुक्त होती है। खेत समतल तथा उचित जल निकास वाला होना चाहिए। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके दो जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सो देखो दोस्तों या तो अपन ने जानी है भूमि की तैयारी के कैसी भूमि अपन को चाहने हैं अपनी लोबिया की खेती के करबे के लाने और के जुताई करने हैं और कैसे जुताई करने हैं। अब एक के संगे अपन बात करें बुआई का जो समय है एवं बीज दर है, तो कौन सी अपन को बीज लेने और वे उनकी उपज का है, सो इस बारे में अपन बात कर लेते हैं।
1: तो लोबिया की बुआई के लिए वर्षा प्रारंभ होने पर जुलाई का समय जो होता है वो एकदम उपयुक्त होता है। इसकी मुख्य प्रजातियां बीज दर एवं उपज कुछ इस प्रकार हैं।
0: बिल्कुल, इसमें जो बीज दर है तो पहला बात कर लें अपन इसकी प्रजाति की, तो जो प्रजाति है वह है टा 5269 और इसकी बीज दर है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका तैयार होने की अवधि है 50 से 60 दिन और इसकी जो उपज है वह उपज है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फलिया की। सो या तो हमने आपको एक प्रजाति बता दी, अब एक के संगे संगे अगली प्रजाति बताएं हीर।
1: जी हाँ, तो अगली प्रजाति है टा 2। इसका बीज दर है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका तैयार होने की अवधि है 60 से 65 दिन और इसकी उपज है 300 से 325 हरा चारा।
0: हाँ बिल्कुल। सो देखो दोस्तों जब अपन ने अगली प्रजाति की बात कर ली है, एक के संगे एक प्रजाति और है टा 2। इसकी जो बीज दर है वह है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसकी तैयार होने की अवधि है वह है 130 से 135 दिन और इसकी उपज की बात करें तो इसकी उपज है 14 से 16 दाना प्रति हेक्टेयर, जो दाने की उपज है वह प्रति हेक्टेयर में है। और अब एक संगे अगली किस्म को अपन जान लेते हैं।
1: अगली प्रजाति है यूपीसी 4200। इसका बीज दर है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तैयार होने की अवधि है 70 से 80 दिन और इसकी उपज प्रति हेक्टेयर है 350 हरा चारा।
0: बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। सो अपन ने साथियों जो प्रजातियों की जानकारी ली है, अब एक संगे संगे अपन बात करें बीज उपचार की के जो बीज उपचार है वो कैसे करें और कब करें। सो आओ जानते हैं।
1: बुवाई के पूर्व बीज को 2 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करने के बाद लोबिया को विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से अरहर की फसल के लिए दी गई विधि के अनुसार उपचारित करके बोना चाहिए।
0: जी हाँ। अब साथियों बात करें बुवाई की, तो दोस्तों बुआई जो है वह है कि दाना व हरी फलियों के लिए बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। दाने वाली प्रजातियां लोबिया टा 2 की बुआई पंक्तियों में 45 से 50 सेंटीमीटर तथा 5269 लोबिया की प्रजाति की बुआई फलियों के लिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए और चारे तथा हरी खाद के लिए लोबिया की बुआई छिटक कर करनी चाहिए। सो दोस्तों जो अपन ने देखो बात कर ली बुआई की, अब बात करते हैं अपन खाद की।
1: नत्रजन 10 से 15 किलोग्राम तक, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले प्रयोग करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों। अब बात करते हैं अपन इसकी सिंचाई की, मेन बात है सिंचाई की। तो दोस्तों सूखे की अवस्था में एक या दो सिंचाई अवश्य करें। अब बात करते हैं आगे निंदाई गुड़ाई की।
1: बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक निकाई यदि खरपतवार हो तो करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अब बात करें फसल सुरक्षा की, जैसे कि कीट माहों व्याधियों से अपन कैसे निपटें, सो बात करते हैं इनके कीटों की।
1: माहू कीट से फसल की सुरक्षा करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो यह कीट झुंडों में पौधों पर चिपक कर रहता है तथा पत्तियों, फूलों एवं फलियों से रस चूसकर फसल को हानि पहुंचाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो इसे अपन को बहुत सावधानी बरतने अपनी ये फसल में। अब बात करते हैं इसके उपचार की।
1: तो अब इसके उपचार के लिए इसकी रोकथाम हेतु निम्न रसायन का छिड़काव करना चाहिए। तो रसायन का नाम है डाइमिथिवेट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर।
0: सो दोस्तों, जो तो अपन ने दवाई के बारे में जानकारी ली है और बात को जानी है, अब बात करते हैं फली छेदक जो कीट होते हैं, सो इनकी बारे में भी अपन बात कर लेते हैं।
1: फली भेदक नामक कीट से फसल की सुरक्षा करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? इनकी सूंड़ियां फली के अंदर दाने को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके उपचार हेतु, इनकी रोकथाम हेतु निम्न रसायन का प्रयोग फसल में फूल आने पर करना चाहिए। मोनोक्रोटोफास 36 EC 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर।
0: जी हाँ, अब बात करें सूत्र।

0: कृत्रिम की।
1: सूत्र कृमि की रोकथाम के लिए ज्वार की मिश्रित खेती करें।
0: बिल्कुल दोस्तों, सो देखो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में अपन ने जहाँ लोबिया की खेती की जानकारी ली है, एक संगे संगे आओ सुन लेते हैं एक और बढ़िया से गीत को, और गीत को आनंद लेते हैं। जी गीत को गा रहे हैं शोभाराम पंडा जी।

0: देखो साथियों, जो अपन ने गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे शोभा राम पंडा जी। अब आज के कार्यक्रम को अपनो समय भी हो रहा है, सो आप सब जने कार्यक्रम के राय सुझाव भी हमें दें हमारी नंबर पे। सो अब अपने दोस्त माता दीन भैया को
1: और आपकी रेडियो साथी हीर को
0: दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बाविधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो, लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। तो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में, के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौ ने मड़ के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरो सुनो डरो लीलार के बेंदा ले दे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत, अपन सब जन ने सुनो है ये गीत को, आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनते हैं अगले साथी की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग गए लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को आनंद लव है। ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों, अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया की बात आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमाछम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके एक गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को।

मोरी चुनरी भईरे भदरंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इको आनंद लव है। आप दोस्तों ये लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गए है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।